What a song. She began the song, but the song did not end with her. जो दिया था उन्होंने वो चिराग बुझा नहीं, गीतमाला की रोशनी आज भी कम हुई नहीं. जब दीप जले आना, जब शाम डले आना. फ्रॉम मूवी चिच्चोर, रिलीज्ड इन 1976. पद्मा रिक्वेस्टेड द सॉन्ग ऑन फेब्रुअरी 21st. अ सॉन्ग अबाउट वेटिंग, अबाउट कनेक्शंस, एंड थोड़ी पर्हैप्स अबाउट कीपिंग अ लाइट बर्निंग.